जबन काल सब जगत बनायो देवता जशन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन गो सब गुण सुख दियो सतरन गोपाल मोह वध कियो घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछानत

भाई संबत 17 सहस पणजय अर सहस पुन दीन कह जय भादरव सुदि अष्टमी रविवारा तीर सत दुरव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत।

0: लगा कि हे गुरसिखा, मैं दुनिया का बादशाह हाँ, मैनू संसार का बादशाह कहंदे ने लोक,
1: अंत काल है नहीं सहाय,
0: अखीरले समय मैं तेरा सहायक नहीं बन सकता, तेरी सहायता नहीं कर सकता,
1: तह कुछ हमरे बस ना बसाए,
0: क्योंकि उथे मेरा कोई वस नहीं चलेगा, उथे कुछ भी मेरे वस विच नहीं है, मेरा जिहड़ा राज है जां मेरा जिहड़ा हुक्म है ना, वह इस दुनिया विच चलदा है, जिस दुनिया की तू गल कर रहा है उथे मेरा कोई वस नहीं चलता, उथे कोई मेरा हुक्म नहीं।

दियो वह दान। करन करावन हर स्वामी सब कटा के अंतर जामी अपनी गायत में जान आप या अपने संगा प्रभराती है तुम रियो स्तता तुम दी हुई नान का वर्ण जान सको ये सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सागर क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग धर्म तो मारे क्रिया सकल उत्तम मैं उत्तम कर हर का नाम जप हो जी सदा सकल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन बुखानी सकल थान दियो हो उत्तम था नानक जी पाठ वासा हर नाम सलोक निर्गुणी आर इया ने सब सदा सुमार जिनकी आय देख पीत राख नानक निविहीन अष्टपदी और मई अकुंजित ब्राणी कानुभूत कान दृष्टा ने जंतु साज सवार सी गारिया गर्व गन मजन उबारिया बार व्यवस्था तो जह प्यार दूध पर जोगन भोजन सुख सूद बिरद भया उपसाद से अनुभव पिया बैठ उदयन इहो निर्गुण।

जागृत हर पार दर्गहमान सहब सार मृदया जान सदा सदय हुकुलन हर नानक राखन हर अपार रतन त्या कौट संग्रज साज छोड़ झूठ संग वचा जो छड़न सो सुथिर कर मान जो हुवन सो दूर परान छोड़ जात का श्राम कर सम सहाय तह पर हर चंद्र प्यो तारा तुय कर तव प्रीत पसम संग हुए आनंद कुमह पत विकरार नानकाठ हो प्रव दयाल करतूत पशु कुमार सजात रूप चार करा दन रात बाहर बेखन त्रमल माया शब्द नाह काश करा छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप रूप समान अंतर गन बाहर तन स्वाह कर पाथर कैस तरा था जग अंतर बस प्रभाव नान तीजन सहज समाध सोना अंध कै समारक पावे कर गह लिखोण ने वह कह गुजार पूजा डोरन कहिया तव समझ पूरा कह बिधन पद गावे गुण जतन कर तव पी सुर पांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उह सुगवन कर तार करुणा दीन बेनती कर नानक तुम्हारी कृपा तर संग सहाय सुवन चीत जो वैरायुता सुप्रीत बल वैक गृह पीतर वसन रंग रस दृढ़ कर मान मन प्रतीत कारणीत वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह यह जुगत बिहानि के जन्म नानक राख रिहु आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम वैर दास जीवन सब तेरी रास तुम आयत पिता हम वैर कतीरे तुम्हरी कृपा मह सुख निरे कोय न जाना तुमरा दुख जी दुख जा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूतर तार तुम देव स्वागकारी उमरी गात में तुम्हें जानी नानक दास सदा गुरबानी सलोक दीन हर पशोर कला गहन स्वाय नानक हुनासी जय बिन नाव पात जाय पदी दास बसूरी पाछ पवे बस कान विकुट को आवे बिना दी दास पी अगली ताओ मूडा कहो कहा करी अज ठाकुर समझा जिस ठाकुर सिंह ना चारा ताकु की जसो नमस्कार जग मन लाग ब्रह्मी था सर्व सुख तक मन उठा जिस जन

राम सनेह जय प्रसाद राहु लाल हर मन सुख पाव हर हर जह कह दो जय प्रसाद तेरे सगले क्षेत्र ठाके मन शरण पार ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझ को ना पाहु ते मन सा सा समर प्रभु ते जय प्रसाद पाए तो लाभ दे हनन ताक भगत करे जय प्रसाद आप कन पहरे जमाते समरत ग्वाल सुखी जाय जय प्रसाद आसव हस्ता सवारी मंत्र प्रभु कहो कबू न बसारी।

हर गुण गाओ। प्रभु कृपात हुए प्रकाश प्रभु दयाति कमल विकास प्रभु सुप्रसाद वैसा मन सु प्रभु दयाति मैं तू तुम हुए सर्वन धान प्रभु तीरि मैं आया पह कशु न करु हलाया जित जित लाभ तित लग हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ श्लोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह संगत है संवेता नानक बिनवंता साध जनक आचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत सा संग सगरी खोत साध घन मिटे अपमान साध घन प्रगट सो ज्ञान साध घन बुझ प्रभु निरा सा संग साधन वीर साध घन पाय नाम रतन साध घन गीत पूरे जतन साध की महिमा वर्ण कौन पराणी नान साधु सुब प्रमा समानी साध का संग गोचर मेरा साधु हम सदा प्रफुल साधु संग आवह बस पंचा सा संग व्रत्र पंचा सा संग सब गिरी साधु का संग नोहर बयान साध का संग नकद हूं तावे सा संग स्थित मन पावे साधु संग माया तुपेन सा संग नान प्राव सुप्रसान्न सा संग दुश्मन सा भीत साधु का संग अपनीत

अभी धन साध बढ़ाय नान साध प्रभु बनाय साध धन कबु सुताव साध धन सदा सौ का सा संग गोचर लह साधु संगा जा रस है।

साधु कै संसूत तानु पावे जिस दंत जो सब को रसावे सब संग धर्म राय करे सेवा साधु धम सोवा सुर देवा साधु धन पाव कलाय न साधु संग मृत मन गाय न साधु धम सर्व थान कामना न साधु धम सब रज नाम साधु धंग नहीं काश पार दर्शन पीड़ धन भजन हार साधु धंग लोक तहरा साधु धंग नरक पर हरा साधु धंग ईघा उह सोहि रसा संग विचरत हर मेरा जो ईश है सोई फल पाव साधु धंग व्रत जावे

संग भया गगर सा संगत भई हमार साध बटे सा रो नाम साध बेटे संजोग साध महिमा भी न जान जेता सुन है तेता बखिया न साध भी बुमा ते हुगुण ते दूत साध भी बुमा रही पार पूर साधु की शोभा का ना ही अंत साधु शोभा सदा भी अंत साधु शोभा उचित उच्च साधु शोभा उचित मुच साधु शोभा साध बन आयु नान साध प्राप्त यदन पाय श्लोक मान साचा मुख साचा सुयवन पीख एक बिन को नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होया सुपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलीप जह जल में कमल लीप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जह सूर सर्व का शोक ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट समान जह राज रंग कवलागत रूपवान ब्रह्म ज्ञान का तिर जी का जो सदा को सुदा को चंद्र ब्रह्म ज्ञान का है गुना नान जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञान निर्मल निर्मला जह मैण नारा गय दरा ब्रह्म ज्ञान का मान हो प्रकाश जह तरु प्राकाश ब्रह्म ज्ञान का मित्र सदृ समान ब्रह्म ज्ञान का नाह अभिमान ब्रह्म ज्ञान उच्च ऊंचा मन अपने है सब दिन ऊंचा ब्रह्म ज्ञान सी जन पाई नान जन प्रभाव क्रिय ब्रह्म ज्ञान सक गिरी नया तुम रह ब्रह्म ज्ञान की न ब्रह्म ज्ञान की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञान दिकाश बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञान सदा सम दर्श ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट अमृत बरस ब्रह्म ज्ञान बंधन तुम मुक्ता ब्रह्म ज्ञान की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक उपरा ब्रह्म ज्ञान का नहीं बना ब्रह्म ज्ञान का गरीब समाह ब्रह्म ज्ञान पार उपकार माह ब्रह्म ज्ञान का नाह कंधा ब्रह्म ज्ञान किता बंध है ब्रह्म ज्ञान का हो सो पला ब्रह्म ज्ञान सो फल फला ब्रह्म ज्ञान संग सकल धा नान ब्रह्म ज्ञान जप सकल संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का बस अब्रह संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जाग तो ब्रह्म ज्ञान अहम बोध त्याग तो ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का भीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चिंत ब्रह्म ज्ञान का नरमंत ब्रह्म ज्ञान जहकार प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दस बड़ भागी पाइया ब्रह्म ज्ञान का बाल बर जाइया ब्रह्म ज्ञान का खोजर नान ब्रह्म ज्ञान या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सकल मान वाह ब्रह्म ज्ञान का

जाना ब्रह्म ज्ञान का अंतर पार नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीवन मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ब्रह्म विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ कनाथ ब्रह्म ज्ञान का सब उपरहत ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान का निरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभा ब्रह्म ज्ञान बने नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन सलो पूरा रजो अंतर्नाम शरम भी का भगवान ने मुख निमुखा को नमस्कार नान गुह पर सकल ने राष्ट्रपति मिथ्या नाह रसना पर सर मर्म प्रीत निरंजन दर सौ पर त्रिय रूप न बिख नेत्र साध की टह संघित करण ना सुना कहु कि नंद सब जाने उसको मंद गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बाह मन ते टर इंद्री जीत पंच दुख ते रह नैन गुण वधि को ऐसा पर वैसन सो जिस प्रसो प्रसन्न विष्णु कुमार तुह भिन्न कर्म कर तो हुआ निष्कर्म तिह वैसनो का निर्मल धर्म कहु फल की इच्छा निह वैछय केवल भगत कीर्तन संग्रह च मंत्र अंतर समसं को पैल सब प्रोध कृपाला उदृढ़ अवरहम जो पावे नानक वैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत कारण सकल त्याग दोष का समान्त बिन सह सकला परम कर पूजा सकल पार परम सह संग पाप अमर हुए तो भगवती कुमार उत्तम हुए भगवंत की टहल करायन इतन हित मानत नर्व विष्णु प्रीत हर की चरण हरता बसव नानक है भगवती भगवंत का पाव सु पंडित जो मन प्रभु धरम नम आत्म सुध राम सार रह पीव पंडित का उदीह जाग जीव हर की कथा हरता बसव सु पंडित फिर जो नावे वेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जान सथुर चह वर्ण को दीप दिवस नैन पंडित कव सदा दिवस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह वर्ण नाम जप को नाम जो जो जप दुखा दो शासन पाव जन को कर कृपा अंतर्वतार पास प्रीत मुकुद पात्र कवतार सर्व रूप योग नाम कल्याण रूप मंगल गुण गायम का जुगत के तान पाई धर्म नान मिला जिस लिखा दुर्कर्म जिसके मन पार ब्रह्म कर्म दुख नाम सत राम दास तुम राम तुह

सोक हवे। तैसा हरख तैसा सोक सदानंद तह नहि वियोग तह स्वरण तैसु संवाटित समृत तह विखाटित सम तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक कोह पुरख कही है जीवन मुक्त।

पर बिरग न बजाय। कई कोट पावन पाण वै संत कई कोट दीस भूमंडल कई कोट शशि अर सूर नकिया तर कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपन है सूत तार नानक जह जह पाव देस देह तार कई कोट राज सतामस सातक कई कोट भी प्राण समृत सत कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रिय सूत्र मृगाच सब ते नीर है सब ते दूर नानका पार पूर कई कोट पाताल के वास कई कोट नरक सुरगुण वास कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बाजो ने फिर है कई कोट बैठ से ही कई कोट काल है थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया महचिंत जह जह पाणा तह तह रख नान साहब के शिव प्राप के हाथ कई कोट पय वैराग्य राम नाम संग तिन लिवलाग कई कोट प्राप कहु को जंत आत्म पार ब्रह्म रहंती कई कोट दर्शन का प्यास तिन को मेरे प्रभु मनास कई कोट मांग साध संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हुया सो प्रसाद नानक दिए जान सदा तन तन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक कंकार कई कोट किन व्यापात प्रवत ब्रह्मा समात अकांतना जन कुया प्याव नान प्राव सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन हुवते आत्म प्रकाश कई कोट दात की विधि सदा निहार है कुन यत्र कई कोट नाम राह पीव हमर भय साध साध जीव है कई कोट नाम गुण गावे तुम रास सुख सहज समाव है अपने जन को सास सा संवारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवीक है दूसर नाह कोई नानक देह बलहार ने जाल तनवाही गल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जो देह पावे सोई होग खिन में था उथा पनारा अंतर नहीं किस बार बार हुक्म तार तार हवे हुक्म बुझा हुक्म समावे हुक्म उजनी व्यवहार हुक्म अनकरंग प्रकार कर कर दिखा अपनी उड़िया ज्ञान सा मैं रहे असमय प्रभ पाव मैं अनुका तो पाव प्रभ पाव न पाथर तरा प्रभ पाव अपन साह तेरा खबर पाव न हर गुण पा खे प्रभ पाव न पत तिव हर आप कर अपन विचार है तुम हर श्रृंगार स्वामी की रवि अंतर जामी जो पाव सुकार करावे नानक दृष्टि और न आवे कहु मैं अनुकती क्या हुए आवे जो धु पाव सोई करावे उसका हाथ हुए तो सब की शैली जो धु पाव सोई करिया न जानत हो विख्या महाराजा जे जानत आओ बना बचा पर मैं पूरा देह देह तावे।

करा बख्शीस। ताकाली खाना खना जगदीश जी पिंड सद किरा घट घट पुर ब्रह्म करगा अपनी बाण ता बनाई नानक जी वैदि बड़ा इसका बाल नाही सहत कर्म क्रम सर्पनाथ आगे कर बपरा जियो जो देह पावे सोई फन थियो कब ऊंच नीच मह बसा कब सो घर खरंग हसा कब नींद चिंद व्याव हार कब आकाश पयाल कब बेत।

सहसंगति उपावे। वो सहस्थान त्रिपहनयाव त्रिविज्ञान प्रकाश वो सहस्थान कन्ह विनाय सुमंत नाम रति करंग सदा वह पार्वम के संग जो जाल मंगलाय खटान तुम ज्योति संग जो सुमायना मेट गए गवन पाय विश्राम नानक प्राप के सदगुरबैं सलोक सुखी बसैम सगिन अनुवार तलि बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अवमान सोनर्क पाद योद स्वयं जो जान में जवन मंत सोहबत भिष्ट का जनता उसको कर्म मंत कहवे जन्म मर वह जोन प्रमावे तन भूमिका जो कर गुमान सुमूर्ख अंधा ज्ञान कार कृपा जस के कृता गरीबी बसावे नान की हम उगता का सुखावे तम अंत कार करवावे तरण समान काश संग न जाए वह रस कर मान ऊपर कर आस पाल की तरह ताको ही बिना सब त्यार जाना बलवंत खेन में हो जाए बस मान तो है किसान बता आप अहंकार ये कर्म रहते करे कुवर गुरु प्रसाद जाको मटे अब मान सो जा नानक तर्क प्रवाहन कूट कर्म कर हारी श्रम पाव सक्र व्यर्थारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सब फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं त्रवे हर तर्क कह के सी कव्यास को जो पाला कह तो सब लाइ निकट नावे सर्व गिरी जा कवन हुई कह नानक ताकि निर्मल सोय जा बलाग जाना मुझति का शुता उसका सुख नहीं कोई जावे जाना मैं किस करता तब लाग कर जो न फिरता जब तार है कु बैर मीत तब लाग निष्कना पीत जब लाग भग्न संगवाए तब लाग तन राय देश जाई प्रभु कृपा ती बंधन टूटा गुरु प्रसादान खाव छूटा सहस खटी लाख कोठ ताव ध्रुवतना आव माया पाच का पवन भोग विखिया की कर न ध्रुवताव खाव खमरा बिन संतोष नहीं कु राज स्वप्न मनोरथ वृद्धि सब का जय नव रंग सर्व सुखी बुढ़ भागी के सब राव तो ही कर्ण कराव ना पिया सदा सद नान कह जाप कर्ण करावन करण हार इसका हाथ कह विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हुआ पिया पाप राव सोई जो किसकी न सपन रंग सत दूर सब हो गया संग गुजा दिखा कर बबी का पही का पहनिक मर न बन सव न जाय नान सद रह असमय बबुदी सह समझा पब रजा सबके साथ आप की न अपन विस्तार सब का शो

प्रसाद सदराव स्वामी गुरु प्रसाद गणा वकियान साच साच साच सब गिना कोट मध्य गणा बिरला जीना पल पल पल तेरा रूप है सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी कट कट सुनि श्रवण बकियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक पन पी श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हार संत गिनेंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपद संत का दुख नार जकट संत का दुख जम दिन छुटा संत का दुख सुख सब जाय संत का दुख न नरक में पाए संत का दुख न मत हुए मुदीन संत का दुख सुबीन संत के हथी का रख न कोई संत का दुख थान भ्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जी कर नानक संत संगनंद कबीर तारा संत के दुख दे मुख पावे संत का दुख काग जरा संत का दुख सर्व जोन पाए संत का दुख न त्रिगत जोन करवाए संत का दुख तृष्णा मरा संत का दुख सब कुशल है संत का दुख न तीज सब जाए संत का दुख न नीच नीचाए संत दुख का था नाह नानक संत पावे तुई विगत पाए संत कनंद महाताए संत कनंद कखिन टिकना पाए संत कनंद को महा हथियारा संत कनंद को परमेश्वर मारा संत कनंद को राज तीन संत कनंद को दुखी हर दीन संत कनंद को सर्व रोग संत कनंद को सदा विजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावा न उसका पी हुए मोख संत का दुख सदा पवित संत का दुख सा का नहीं मियत संत का दुख का डान लाग संत का दुख का सब त्याग संत का दुख महाअहंकारी संत का दुख सदा विकारी संत का दुख जन्मा मारा संत का दुख ना सब तेटारा संत का दुख का ना ठाव नान संत पावत नहीं मिलाय संत का दुख याद भी ते टूटा संत का दुख के तकाज ना पाया हुचा संत के दुखी कौ दयान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की रोथा संत का दुखी की जड़ किसन आया अपन भी जाप ही खाही संत के दुखी का वरण रखना नान संत पावत नहीं ओबैर संत का दुखी यूं वेल लाई ज्यों जाल विहून बछड़ी तड़ फटाई संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पाव की दन नहीं त्रापा संत का दुखी छुटाया अकेला ज्यों उड़ तेल खेत में हूँ दुखेला संत का दुखी तरह ते रह तो संत का दुख साधन त्या कह तो कर नंद का तुर ही पाया नानक जो दुख पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुख का दरगाह मरा सजाए संत का दुख सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरा ना जीवाई है संत का दुखी को पूजा ना आसा संत का दुखी उठ चला ना रासा संत का दुख ना दृष्टा पूजा है पावत ऐसा कोई हुए पाया कर ना बेटा कोई नानक जाना सचा सोई सब कर दुख यो करने आर सदा सदा दुख को नमस्कार प्रभु की उस्तत करहु दिन रात तिसे हितिया वह सास ग्रह सावकाश वर्त दुख का किया जैसा करता है कुथिया अपना ही लाभ करने आर दूसर कौन का है विचार जिसन कृपा करते सा अपन नाम दी बड़ पागी नानक जान से श्लोक तजह से अनुसर जान हो सिमरह हर हर आई का शर्म रख नानक दुख परम पाव जाय अष्टपदी मानुख कीटी कबृति सब जान दीवन कई का भगवान का दिगर है आ गाय वाहना दुर्सना ला गया मारा राखे कुआ मानुख कह केश नाही हाथ उसका कुंभ जो सुखे तो कनौरा कण पुरो सिमर सिमर सिमर प्राव सो नानक विघन ना लाग कोई उसका तो मान में कारण रंकार कर मन मेरे साथ व्यवहार निर्मल रसना अमृत।

करह विचार चेतनात् कन संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हुती सुखी एक एक एक पछान तुत क्यो सोज जान नाम संग जिसको मन मारिया नानक तिन्ह निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सुजय दुख जन तृष्णा बुझ सा संग हर हर जह कह तु सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनदन कीर्तन केवल बखिया अनग्रस्त मैं सोच निर्भय अनेक उपर जिस जन की आशा कट गया कृपा सब पार पंक जिस मन भूख नानक ते सह न लागह दुख जिस को हार ब्राह्मण चित सो संत सुहेला न हिंडला जिस प्रभु अपने कृपा करा सो सेवक कह किस ते डर जैसा सा तह दृष्टा अपने कार्य में अव समाया सोदत सोदत सोदत श्री जया गुरु प्रसाद तथा गुजिया जब देखा तब सब गुरु नानक सो सुखम सोया सोर नहीं।

योग में जोगी ताप मह तपि सरग्रह तमा भोगी त्यायु त्याय भगत सुख पाय नानक देह पुरख अग्नि अंत न पाए जागी लीला की मेरे तना सकल देव हरि अवगाहि पिता का जन्म की जाना पूत सकल पुरख अपना सूत समात ज्ञान ध्यान जन दी जनता नाम दिया वह सी तेह गुण मह जाग ब्रह्मा जन्म मर फिरावा जाय उद नीच देह स्थान जैसा जनावत स्नान नाना रूप नाना जाग रंग नाना भी कराय करंग नाना वेद की नवस्था रूप प्रभम राशि ओंकार नाना चल करी खिन वाहि पूरे हो पुन सब ठाय नाना वेद कार बन तो बनाई अपनी कुंते पाई सब काट कर के सब के ठाय जब जब जीव रन हर नाम नाम की तारे सगले जन नाम की तारे खंड ब्रह्मांड नाम की तारे सिमरत वेद प्राण नाम की तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम की तारे आकाश उपातार नाम की तारे सकल आकार नाम की तारे पुरी सब पवन नाम का संग उदरे संश्रावन कार के रूप जिस अपना नाम लाई नान चौथे पाद में सो जन गत पाई रूप सात जा का सात अवस्थान पुरुष सात गुरु प्रदान करतूत सात सात जा की बाण सात पुरुष समय स्मरणी सात कर्म जा की रचना सात मूल सात सात उत्पात सात करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाई तो सात सब परि सात नाम प्रभु के सुखदाय विश्वास सात नान कुर्ति पाय सात वचन सात उपदेश सात जान जागरता प्रवेश सात निर्त पूजा जी कोई नाम जब गा तो या सात किया सब सात आप जाने अपनी वेद गा तो जिसके श्रेष्ठ हो सो करण आरो न बुझ कर विचार करते कि मैं इतना जाने किया नाम जुद पाओ सो वर्ती या विस्मन विस्म का विस्माद जिन बुग दिया दया स्वाद प्रभु का रंग राज जान रहे गुरु का भजन पदार्थ रहे हुए दाती तू काट नार जा का संग तारा संसार जन का सेवक सोवड पागी जन का संग एक लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावा गुरु प्रसाद नान फल पावे श्लोक सच जुगा सच है पिय सच नान कोसी पिय सच अष्टपदी चरण सात सत प्रसन्न पूजा सात सत शिवदार दर्शन सात सत विष्णु नाम सात सत यावन हार

मान्या कर्म करां तुम गुरु पछाणिया। जा कर दया विश्वास पावै तद ज्ञान तुम्हारा प्रगटाया पै ते निरपा हुई बसाना जिस ते उपजया ते हमारे समान बस महिर बस कटाई ताको पिया न कहना जाई।

जब नान प्रभा राखो का डारणी बारं बार बार प्रभ जपिया पिया अमृत देख नान तंत्रा पिया नाम रतन जिन गुरमुन पाया ते सह की शवर नाह दृष्टाया नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम राह जो जन तृप्ता नहीं।

चाहे प्रभु सुन रहे सुमाई। जो हुआ हुआ तो सुब जान प्रभु निका पूछा दैत कि मैं हम कौन बका न दुख गुण कही न जान आठ पैर प्रभु से जूरी कहो नानु से जान पूरी मान मेरे तिन की ओट लीह मान तने अपना तिन जान दीह जिन जाने अपना प्रभु पूछा तो सुब जान सरथो का दाता दुख शरण सरथ पावे दुखा दरस स पाव मेटावे और से अनुसरी शाट दिख जन की तू सेवा लागा मन जान हुई तेरा नानक दिख जन के पूजा हो साध प्यारा सलोक साध पुरख जन जाने साधु गुरु दुख का नाम दुख का संग से खुद रहे नानक हर गुण का वस्त पदी साधु गुरु से की करा प्रद पाल शिव को गुरु सदा दयाल से की गुरु दुर्मत माल हेरे गुरु वचन हा नाम उतरे साधु गुरु से की बंधन काट गुरु का सिख पुकार दियाट साधु गुरु से को नाम तान दी गुरु का सिख उठवागी ही साधु गुरु से का हरत पल सवार नानक साधु गुरु से का जी अनाज सुमार गुरु का गृह से उग जो रह गुरु की आगा मन मस्त है आप सब कर काशना जनावे हर हन औरत

सुन कर वचन करण आया गहने मन संतुखै तुम पतिया ने पूरा गो राखियो जा का मंत्र अमृत दृष्टि खव संत गुण बेअंत क्यों नहीं पाए नानक जी पावत लय मलाई।

जीवंत गिना न पाई। अनक भगत बंधन नियुत कर चरण कवन हृदय सुमरै सतगुर हरि सतगुर अपने नारायण जह प्रसाद सब प्रभु जपने हो हर स्वरूप आवे जन कोई अमृत पीवा अमृत सोहि उस गुर का नाहि कदे बिना जा कै मन प्रगट गुणतास।

शिवाव त्याग सर्व कर दिए वह यह रतन जन्म का हुई वर हर हर सिमर प्राण आधार सूटना आर्य सिमर साध वेद विचार हर कृपा कर मन लाए मन बन छत नानक पाल पाए।

छुटकार। आस हस्ती राथ असवारी झूठा डम फ झूठ पा सारी जिंदी तिह बुझा ना बिगाना ना बसा नानक पछताना गुरु कुमार तू लिख आने भगत बिना बडू बे सियाने।

जन कहो प्रभु जो दयार शिव कुन सदन हर बंधन काट मुक्त जन पया जन वर दुख प्रम गया इस पुण्य सरदा सा पूरी रव रहा साध संग जुड़ी जिसका साथ लिया मलाई नानक भगति नाम।

सुकर्णी सुवातन मंद हृदय बस पूर्ण गौर मंत साध संप्रादि निवास सर सुहन अनुप्रकाश लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सन समाधि पावन किया नानका प्रजापष्टपति जब अकारि हुकाश न दृष्टि तब पावन तब कहती होता।

पुनर सर्वन शावत आल जाल माया जंजाल हम अम्बुह परम पर दुसुमान अपमान अनेक प्रकार की विखान अपन की राव कर देख है खेल संकोचा तब नानकी कह जह आप गत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दुहु पाका आप बह तन उनकी सुबह अनु बनी आप है कौत कर आनंद जो जो आप है ना आप है रास भोगन निर्जोग जह पवत सपना लावे जह पवत सुखील खिलावे भी समार अथा अगनत अतुल न्यों बुलाव त्यों नानक दाह बोलै सलोक जी आ जंत की ठाकुर आप वरत नार नानकी को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथा सुन ने हार आप ही का विस्तार जात पावत सृष्टि उपाय अपना प्राण लय समाई तुम ती भिन्न नहीं किस होया अपन सूत सब जगत पुर जाक प्रभु जी आप जाय साजना सोई जन पाई सो संतरसी तत कबीरता नानक सब सृष्ट का जीता जी आ जंत्र सब ताक दीन दयाल अनाथ पनाथ जिस राख तिह कोय न मारे सुमुआ जिस मन सार तिह ताज अवर कहाँ को जाय सब सिर एक निरंजन राय जी आ कि जुगत जाक सब हाथ

जाने आप अंतर जमी रही उप्याप। प्रात पाले जीन व पैत जो जो रचियो सोते से हित्यात। जह पावत हले मलाई पद करे हर की गुण गाई। मने अंतर विश्वास कर मान्य करना नानक के जाने जान लागा। हरि कहना है तिसकी आस न वृति जाए। सेवक और सेवा बनाई हुकुम बूझ। परम पद पाई हित उपर नहीं विचार। जा कमन बस्या निरंकार।

जीवन गोविंद अमृत रह पियो। चेत चेतवह नारायणी के गुरु जागरंग अनेक गोपाल दाम उतर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी अकाय दारु तुम श्लोक साधु के वचना।

तिनका साथी शरण जोग संसरणी आई कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए बैर पय सबरी न प्रतनाम सा संगलैन सो प्रसन्न पय गुरदे पूर्ण हो सेव किसी वार जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी प्राभ की उस्तत करह संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुणाम जिस मन बस सोधन धान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हुई प्रदान पुरुष कट सब लोग सब तुज पाय स्थान वह न हो जान हर तन खाट कर जान सुय नानक जिसे प्राप्त हुए किम शांत रित नव निरुद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब गमाद सकल देवदास सुंदर चतर तात कविता समतर शीघ्र दृष्टिता इह फल तिह जान का मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने हुन दान जप मन पूज सब जुग मह ताकि गात होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगन मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कूट अपराध सात संग मेट संत कृपा ती जमती छोटा जाके मस्तक करम प्रपाय सा शरण नानक दियाई जिस मन बस सुना लाय प्रीत तिह जानाव हर प्रभ चीत जन्म वरुणता का दुख निवार गुलाब दीह तत्काल उदार

सुकह टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

आखह पड़े करे वख्याणम। आखह ब्रह्म आखह इंदु आखह गोपित गोविंद आखह इसराख सिद्ध आखह किते किते बुद्ध आखह दानु आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव किते आखह आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे ते किते होर करे ता आख न सकह की के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै भूल बिगाड़ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित भै सर्व समाले वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे केते राग परिसुन कहियन केते गावन हारे गाव है तोहन पौन पाणी बै संतर गाव है राजा धर्म द्वारे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंदे दासन बैठे देवत्यां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन पाए तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदन गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर कीते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है भी होशी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता आपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर से हुक्म न करना जाई सो पाद शाहो साह पाद साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरन पद झोली ध्यान की करह भभूत किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश सया देश वाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत गया दया भंडारण घट घट वज नाद आप नाथ नाथी सब जाके रे

पी है अपी है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनीर है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वाने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो

तत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग। नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाए, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता ही, एक मूर्त अनेक दर्शन।

पुरुष अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वगो प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदयन पेख सर्वशास्त्र न जानहि जहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेद पाख नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न वही बहुचेत मद पार छंद तव प्रसादम।

में पूजांग प्रयाद छंद चतुर जगर करता चतुर जगर हरता चतुर जगर दाने चतुर जगर जाने चतुर जगर वर्ती चतुर जगर परती चतुर जगर पाले चतुर जगर काले चतुर जगर पासे चतुर जगर वासे चतुर जगर माने चतुर जगर दाने चाचरी छंद ना सुत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय जन्म अजाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै पृथ्वी स दिश अदृश अकृश भगवती छंदो त्व प्रसाद कथते के अछय दिश है के अभिज भिष है के अगंज कर्मै के अपंज भरमै के अभिज लोकै के अदित सोकै के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभा है धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतन कृति है के क्षत्र क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद आदिव है के आप अपिव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हक है के पाक बे अव है के गैवल गैव है के अहोल गुनाह है के शाह न शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज गृहिम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग करी है के सर्वंग दरी है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर राज्य है केशवतर साज है केशवतर दीन है केशवतर लीन है केशवतर जाह केशवतर भाव हो केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर काल है केशवतर पाल है केशवतर हंता केशवतर गंता केशवतर पेखी केशवतर पेखी केशवतर काज है केशवतर राज्य है केशवतर सुख है केशवतर भूख है केशवतर त्राण है केशवतर प्राण है केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर मान्य सदैव प्रधान है केशवतर जाप्या है केशवतर थाप्या है केशवतर पान है केशवतर मान है केशवतर इंद्र है केशवतर चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमावर वजू है मेसु सलाम है श्री कतम उदाम है गरीवर सिकस्त है गरीवर परस्त है बिरंदन कान है जमीनू जमान है तमीजुल तमाम है रजूल निधान है रिफुर जिमर जाय के यकीन है अनेक उतराग है भेद है भंग है अजीज निवाज है गरीबन खराज है निरुगत स्वरूप है धर्मगुत विभूत है प्रभुगत प्रवाह है सुरजुगत सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सदा है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूप अना स्वरूप नंगी अनाम त्रिभंगी त्रिकाम त्रिभर्घन त्रिभाद्य गंजय गाध्य शुभंग सर्वभाग्य सुसर्व अनुराग है त्रिभुग स्वरूप छिज है शूत है गिनर्क प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है भीख है लेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है जय है व्यय है भूत है तूत है अनास है उदास है तंध है बंध है अभगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है देख है अलेख है भीख है अटह है अगह है असंभ है अगम्ब है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपड़ छांदो त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंदो त्वे प्रसादम नमो नरक नाशय सदैव प्रकाशय अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमादं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे

मंत्र मंत्रेण ध्यान ध्याने नम युद्ध युद्धे नम ज्ञान ज्ञाने नम पूज पूजे नम पान पाने नम कलह कर्ता नम सांग रूपे नम इंद्र इंद्रे अनादिं विभूते कलंग कलंकार रूपे अलंकार अलंके नम आश्वास्य नम बांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अक्षरी छांद।

प्रणाशे सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद दो सतरुं प्रणाशे गिरिमुन कुनिंदा समस्त निवासी अजाहे विभूते गजाय विघ्नि में हरियं करियं करिमुल रही में चतर जकर वर्ती चतर जकर भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जुग जति के सुसुराद शुद्ध सुधादक संग समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मातो को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मात मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूड़ तुरंग कुरंग से कूदत पौन गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भरी विदन जावत शीस न जात विचारे ते भय तो कहाँ भय भूपत अंत कौ नंग ही पाए पधारे जीत फिरै सबदे दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान सुंदर हिंसद ही हराज हजारे भूत भविख भवान।

वह बैठा कहूँ सिपट पयो शंकर इकैठा शिवरी श्रेष्ठ दिखाया चंपव जुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असुख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

मनहु विसारिए। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सभी को जी करता है खेल रचाया। जात इस पाणा ता जमया परवार भला पहाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा।

जग आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी

जिस पुरब लिखे का लहना बिच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत दे विच रब दा वासा है, तू रब नू पाउणा चाहुंदा है ते सतसंग दे विच हर रोज आ जाया कर, हर रोज उस परमात्मा दी बाणी पढ़िया कर, कीर्ती करिया कर, बाणी सुनिया कर। जदों संगत विच आके बैठ जाएगा, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहिंदे ने फिर की होएगा, फिर तेरा मिलाप उस परमात्मा दे नाल हो जाए। अरदास करी सच्चे पातशाह सतसंग दीयां घड़ियां बख्श दे रहो, सतसंग विच आके मेरा मन तेरे चरणां नाल जुड़ जाए। इह सी अज दे हुकमनामे, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पलंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो, अदक अहंग बुध वादे प्यारे इन विद मिलन न जाए, मैं किए कर्म अनेका आर परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध वभिका। पातशाह कृपा करन, आओ हम हजूरी आगे भाई हरबख्श सिंह जी समूह जथे पासों आसा की वाद कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

मधुर सेविय एह नस सहज सुपाहे दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसाउंदी नूर अरसों पुरसों चटीए तुद डिठे सच्चे पातशाह।

गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे मेरा तां इक तू ही है। तां साहिब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी जा खड़ोते ते पुछे हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पास

दिखावा पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात सगत बोलो श्री हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नु कोल सदया अपने हृदय नाल लाके पाई लैणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां। और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

लेकिन अज तक होया कोई नहीं। हुण मैनू कहते इतवार नहीं, मैनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे, अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख देइए। और तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नूं, सामने एक ठीकरी पई सी घड़े दी। और ठीकरी चुक लियाई, कहिंदी है गरीब निवाज इसे ते लिख के दे दियो। साहब जी इसे ते लिख दियो, अपने तीर नाल लिख के दियो। सत सगत बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु हरगोबिंद जी ने पठे विचों तीर कढ़िया, ते जदों ठीकरी ते एका पाउण लगे तां बीबी सुलखणी ने हथ जोड़ के साहब जी दे घोड़े अगे बेनती कीती, तू तां गुरु दा घोड़ा है, साहब जी हर वेले तेरे ते असवारा करदे हन, गुरु नानक दे तां कुत्तियां विच वी करामात है, तू भी कोई करामात करके दिखा। घोड़े ने आखिया, सुंभ हिलाया, आखिया ठहर, मैं तेनू जो लह के देन लगा हां ओ दुनिया वेखेगी। सत सगत बोलो श्री वाहिगुरु। साहब जी ठीकरी ते तीर नाल जो एका पान लगे ते घोड़े ने जो सुंभ हिलाया, एके दा सत बन गया। साहब जी कहन लगे, लै सुलखणीए इक देन लगे सां ए तां सत लिखे गए। कहन लगी गरीब निवाज, लोड़ ही सत्तां दी सी, एक नाल बनना ही कुछ नहीं सी। सत सगत बोलो श्री वाहिगुरु। जमीना जायदादां बहुत हन, लोड़ ही सत्तां दी सी। ते फिर जदों बीबी सुलखणी दे घर पहला पुत्र जमिया, लै के मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद दे चरणा विच लै के पहुंची, जा चरणा ते मत्था टिकाया, ते रस्ता नाल की जा परी है।